0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हुई।
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out or a message for someone special, send your name, space, your song name and your message to 0543091062. Big Unlimited, your request show from 11 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड मॉर्निंग, 7:08।
2: Bollywood.

0: रोचक कोहली आदित्य रिखारी की आवाज टॉप ऑफ द चार्ट्स एवरीवेयर. दिल वाले चोर फ्रॉम पति पत्नी और वो दो.
1: The Big Breakfast with Sid. Now is Shahrukh's Residences by Danube on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: Morning, Wednesday ki subah, 14th of October. This is the show that gets you up and running in the morning. And today, of course, 14th of October is the day that everybody has been waiting for. The best family outing in the UAE is Global Village. Now going to be open for its 31st season this evening. Aaj shaam 6 baje, darwaze khole jayenge, doors open. दिस इवनिंग लॉन्च प्रोग्राम के बारे में क्या क्या अंदर की खबर हमें मिल रही है. ड्रोन शो, क्वायर परफॉर्मेंस एंड टिकट्स के बारे में कुछ टाइम पहले इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी. 25 दिरहम ऑन वीकडे, 30 दिरहम्स ऑन वीकेंड्स एंड पब्लिक हॉलीडेज. एंड वन नोटेबल चेंज फ्रॉम द पास्ट 30 सीजन इज दैट नाउ संडे क्वालिफाइज एज अ वीकेंड टिकट डे. हालांकि इट्स गोना बी ओपन ओनली टिल 12 AM, जबकि थर्सडे नाइट, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट यू हैव एन एक्स्ट्रा आवर टिल 1 AM. एंड 49 dedicated, specially trained Global Village supervisors have been appointed by Dubai Police. Security guards have traffic and minor accidents as well. And traffic flow management mein they've been trained. Violation reporting ke liye. And you can use the Dubai Police app for anything and everything to do with Global Village out there. Any incidents out there. So can't wait for season 31. How about you? Kaisa feel kar rahe hain aap Wednesday ki subah? Let me know. Our WhatsApp number is 0543091062. आप जानते हैं द फर्स्ट आर इज द अर्ली मॉर्निंग रिक्वेस्ट आर. अभी तो शुरू हुआ है तेरा मेरा रिश्ता ऑफ दिस वेंसडे मॉर्निंग. इन केस देयर इज अ सॉन्ग दैट यू लाइक टू लीन ऑन टू काइंड ऑफ गेट यू इन द राइट मूड, सेंड मी योर रिक्वेस्ट ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 0543091062. देयर इज अ न्यू पलाश सेन सॉन्ग दैट आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल. This is Shahrukh's Residences by Danube.
1: Big 106.2.

0: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग बीच, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम, और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस, और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स, जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
1: अपनी बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ। अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए, पैकेजेस सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू। 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं। एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स। आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae।
2: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, 4 exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
3: Got what it takes to say stop.
4: Are you kidding?
5: The Big Cash Call. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Powered by Big Ticket. Coming soon on Big 106.2. The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: It is 7:26 on this Wednesday ki subah. Right now 31 degrees Celsius, partly sunny start to this 14th of October. Humidity at 63%, winds blowing at 8 kilometers per hour, highs of 34, lows of 31 degrees Celsius.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: कितने मिलेनियल्स मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, यू कैन हैव अ बिग शॉट ऑफ नॉस्टैल्जिया राइट नाउ.
1: The Big Breakfast with Sid. Now is Shahrukh's Residences by Danube on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: ऐसा कोई कॉलेज नहीं है देसी जिसमें कोई कल्ट फेस्ट होता हो और कल्ट फेस्ट में यूफोरिया ने परफॉर्म ना किया हो. एक हफ्ते पहले यूफोरिया पलाश सेन केम टुगेदर विद शालमली खोलगड़े, हु आई थिंक इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड सिंगर्स दैट वी हैव बैक होम इन इंडिया, एंड दे हैव डन अ कोलैब कॉल्ड तुमसे मोहब्बत है. इस गाने को सुन के ऑल दोज कल्ट फेस्ट की यादें विल कम रशिंग बैक, ये मेरी गारंटी है. इफ यू स्टार्ट रिमेंबरिंग और थिंकिंग ऑफ are thrown back to those college days and think of those incidences at your college cult fest, give me a call, feel free. 800-1062 is the number, 800-1062, but share your cult fest stories with me. Here's Tumse Mohabbat Hai, Euphoria, Shalmali Kholgade, right here on Big 106.2.

0: शाम ये राजो
1: छाने नहीं रे बाबा आपते बाबा बाबा बाबूराव गणपत राव आपते बोल
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई भंग होगी।

0: Theater, it just takes 5 minutes. I'm buying it right now. Get maximum grey coverage, vibrant color, and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color. Made in Italy.
1: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंट्स के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
2: Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: गुड मॉर्निंग 8:10।
1: बॉलीवुड

0: देखो, एक होता है अफवाह और दूसरी होती है न्यूज. What should I tell you first? Let me tell you the अफवाह. अफवाह ये है that Shashwat Sachdev's soundtrack of Dhurandhar, which is an amazing Dhurandhar soundtrack, it has been nominated for the Grammys in 8 categories. Actually, no, that is not true.
1: The Big Breakfast with Sid. Now is Shah Rukh's Residences by Danube on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: Now let me tell you the news. Actual khabar ye hai that Dhurandhar the Revenge ka jo compositions hain, jo soundtrack hai, 69th Annual Grammy Awards mein it has been submitted for consideration. So when you find, and you will find this news popping up on your social media feed because filter to hai nahi, वहाँ पर आपको ये न्यूज़ दिखेगी कि इट हैज़ बीन नॉमिनेटेड. नॉमिनेशन और सबमिशन में बहुत फ़र्क है. अभी सबमिट किया है, नॉमिनेट होना बचा हुआ है. व्हाट आर द कैटेगरीज? बेस्ट कंपाइलेशन साउंडट्रैक फॉर विजुअल मीडिया फुल एल्बम, बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर विजुअल मीडिया फिर से संग बाय अरिजीत सिंह, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस, जान से गुजरते हैं जो गाना आपने सुना, बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस, देन बेस्ट एशियन पॉप परफॉर्मेंस आरी, बेस्ट पॉप डुओ, बेस्ट रैप परफॉर्मेंस, बेस्ट डांस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग वारी जामा, एंड बेस्ट रीमिक्स्ड रिकॉर्डिंग एज वेल. हम प्यार करने वाले जो गाना है, द बेस्ट रीमिक्स कैटेगरी में भी इट हैज़ बीन सबमिटेड, अभी नॉमिनेट नहीं हुआ है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन अफवाह एंड अ खबर. लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ अब बिल्कुल पक्की खबर, एंड दैट इज कि यू विल नॉट फाइंड एनी तोड़ ऑफ शाहरुख रेजिडेंसेज बाय डैन्यूब. इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. लिव लाइफ किंग स्टाइल एट शाहरुख रेजिडेंसेज बाय डैन्यूब, द वर्ल्ड्स फर्स्ट शाहरुख रेजिडेंशियल टावर, प्राइम बॉर्डर फ्रंट एड्रेस इन दुबई मैरिटाइम सिटी, पैनोरामिक सी व्यूज, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1.65 मिलियन दिरहम्स, एक्सक्लूसिव यॉट भी है यहाँ पर डेडिकेटेड टू रेजिडेंस. आई लव सेइंग दैट, राइट? इट्स सो अमेजिंग विद एक्सेस इंक्लूडेड एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. 40 से भी ज्यादा एमिनिटीज यहाँ पर है, ओवर 3 लेवल्स ऑफ एमिनिटीज, lifestyle deck, wellness deck and sky deck, infinity 33 swim, yani ki 33rd floor pe infinity sky pool, there's a king's clubhouse, elegant lounges, expansive outdoor decks for gatherings overlooking the sea and so much more.
1: Big aap sun rahe hain Big 106.2 The Beat of Bollywood.
2: Subah uthte अपने आलिशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है. शाहरुख बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स. लिव लाइफ किंग स्टाइल.
3: मेरठ की एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली, एक परफेक्ट बहू और एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल दे.
4: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई.
3: Amazon MGM Studios एंड कलर येलो प्रोडक्शन प्रेजेंट नई नवेली स्टारिंग यामी गौतम, आदिनाथ कोठारे, सुनीता राजवर एंड अदर्स, रिलीजिंग 16th अक्टूबर इन सिनेमास, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अल निसर सिनेमा फिल्म. टू विन इनवाइट्स कीप लिसनिंग टू बिग 106.2.
5: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. 4 exciting SUVs with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Got what it takes to say stop.
6: Are you kidding?
1: The Big Cash Call. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Powered by Big Ticket. Coming soon on Big 106.2. The Big Breakfast now is Shah Rukh's Residences by Danube. Brought to you by Zulekha Hospital. Your health matters.
7: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 30% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to your nearest Kalyan Jewelers store today to grab this offer. Conditions apply.
8: Hey, jaldi utha tera khadana.
1: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
0: It is 8:32 on the clock, and let's take a look. सबसे पहले at the capital Abu Dhabi, you'll find a bit of congestion at as usual E30 पर मुसाफा इंडस्ट्रियल, and this is heading south. इसके अलावा everything else seems to be smooth flowing. चलते हैं दुबई शारजा की ओर. Heading towards Dubai from Sharjah 311 पर you'll find the usual. 5 to 7 minutes ki der, then there is E88, the star of the show traffic wise every day in the morning. Aaj quite manageable levels hain traffic ke, going towards safe zone traffic milega aapko. 3 to 4 minutes ka delay you can expect. Also industrial area ki roads S112, 102 Sharjah Ring Road is a bit congested. Then there is the usual 75 ka Sheikh Rashid Street heading east going towards Dubai frame, and also Dubai Alain Road par you'll find 66 pe as you get out of Al Jadaf going towards E11. 4 to 5 minutes ki der.
5: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.

0: खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: 106.4

0: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.
2: Big. Big 106.2.
3: बहुत कम बार ऐसा होता है कि मतलब मेरे फायदे की बात नहीं होती, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा होता है कि मेरे फायदे की बात हो रही है. व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? मंडे से शुरू हो रहा है. वेलकम द बिग कैश कॉल, जिसमें ओ माय गॉड इतना मजा आता है. इट इज द मोस्ट अवेटेड कॉन्टेस्ट, कह लीजिए टूर्नामेंट. इट फील्स लाइक ऑन द रेडियो एंड चांस वी विन 30,000 दिरहम्स इन कोल्ड हार्ड कैश. गेट रेडी फॉर द बिग कैश कॉल कमिंग योर वे 19th ऑफ अक्टूबर राइट हियर ऑन बिग 106.2. 30,000 दिरहम्स रोकड़ा नगद, हार्ड कोल्ड हार्ड कैश आप जीत सकते हैं. प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर स्केचर्स, थैंक यू सो मच. टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, पावर्ड बाय बिग टिकट. सो स्टे ट्यून्ड टू बिग 106.2 एंड गेट रेडी फॉर योर चांस टू विन बिग बिग कैश कॉल 30,000 दिरहम्स इन कैश ओनली ऑन बिग 106.2.
4: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है. शाहरुख्स बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स. लिव लाइफ किंग स्टाइल.
5: Again? The car's not starting.
6: I think the battery's gone.
5: Then stop guessing. Get Solite batteries.
6: What's special?
5: Premium Korean tech. Zero maintenance. Perfect for this heat.
6: Wow, that's smooth. Where do I find it?
5: Auto Pro Fast Track Dialer Battery, Auto Studio, any major auto store. Solite batteries. Power you can trust. Distributed by AMAP Group.
7: Creditmarkets.ae. Don't chase banks. Come to me. Credit cards, loans and mortgages at creditmarket.ae. Call 800 Alfred. Alfred simplifies money.
8: Get ready to celebrate Diwali like never before. The Big Diwali Mela is back. On Saturday, 31st October, join Team Big at Oasis Center Dubai for a spectacular evening filled with fun, games, a fabulous fashion show, spin the wheel and loads of festive entertainment. Bring your family, bring your friends and come make unforgettable Diwali memories with Big 106.2. The Big Diwali Mela, where the celebrations are always big. Presenting sponsor, Papa John's, powered by Solite Battery. Venue partner, Oasis Mall, Dubai. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network.
9: Nothing feels wrong, and that's exactly why you should get checked. This October, give yourself a little peace of mind. Pink It Now is back for its 15th year at Zulekha Hospital. Women over 40 can register for a specialist consultation and mammogram for just 299 dirhams. Because looking after yourself isn't selfish. Call 600-52-442 or WhatsApp us. Pink It Now. Don't wait to feel something. Zulekha Hospital. Your health matters.
10: Golden dreams begin with Big Ticket.
11: A guaranteed 25 million dirham grand prize.
10: 5 consolation prizes, 200 grams of 24 karat gold each.
11: And more gold to win in weekly e-draws.
10: 3 chances to spin for up to 1 million dirhams with Big Spin.
11: Buy your ticket now at bigticket.ae.
12: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
13: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
3: It's 8:49 on the clock, and let's take a look. सबसे पहले at E88. यहाँ पर काफी traffic रोज रहता है. आज it's quite okay. नजर ना लगे, लेकिन safe zone की तरफ and a bit more towards Sharjah Airport, you'll find a bit of congestion. तो मिलेगा ही 3 से 5 मिनट की देर तो आपको होगी ही. Then there is E11 Alnada interchange, one heading south. And then 311 पर भी things are pretty okay, not bad. All the way till the city center Mirdif, you'll find 4 से 5 मिनट max की देर. Sharjah Industrial पर traffic आपको मिलेगा, industrial area 6, S112 पर. and a bit of congestion already at 75 going towards Dubai Frame. A bit of eastbound and westbound traffic on 75. Then there is a bit of congestion at 71 going towards Dubai Mall. And Maidan Street par bhi right outside Bowling Center, you'll find 4 se 5 minute ki der.
0: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.

जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 9:10।
1: Bollywood.

0: The Big Breakfast with Sid. Now is Shahrukh's Residences by Danube on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: And don't forget, factory fitted in every Hyundai and Kia vehicle worldwide. Solite is the battery trusted by car makers. Made in Korea, built for UAE conditions. Solite delivers reliable starts in desert heat and humidity. 100% maintenance free hai, hassle free hai, no topping up needed. Premium Solite AGM battery built with advanced technology for modern cars now comes with an 18-month ki warranty as well. Superior separators hai, corrosion resistant alloy. Solite battery are vibration resistant as well and built for longer life. So reliable after-sales support come maza uthai across the UAE and Middle East. Solite batteries never stop with Solite. Distributed by AMAP Group.
0: Big 106.2.
2: सुबह उठते ही अपने आलीशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है. शाहरुख्स बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 million dirhams. Live life king style.
3: Now lease a brand new SUV from Jetour and Skoda with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
4: अपने business dream को दीजिए एक नई शुरुआत. अजमान New Ventures Free Zone के साथ. अब सिर्फ 2 घंटे में अपना license, 48 hours में एक visa पाइए. Packages सिर्फ 4,888 dirham से शुरू. 100% digital process, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं. एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स. आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae.
0: The Big Breakfast now is Shahrukh's Residences by Danube, brought to you by Zulekha Hospital. Your health matters.
5: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 30% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to your nearest Kalyan Jewelers store today to grab this offer. Conditions apply.
0: The Big Mix miss kiya gaya.
6: तुम कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो.
7: हाय मोनिका.
8: हाय.
7: आपकी रील्स देख कर हमें बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आपकी रील्स देखकर मैं मूवी देखने जाती हूँ एंड आई फील ऑलमोस्ट सेम सेम. अच्छा बताओ भाई, हमें कुछ रिकमेंडेशंस फॉर बॉलीवुड फिल्म्स जो हॉरर जॉनरा की हैं, जिसको देखकर एकदम दिल दहक जाए.
8: देखो, मेरे सारे फॉलोअर्स को पता है कि मुझे भूत प्रेतों की बातें करने में मजा बहुत आता है. तो जहाँ भूत दिखते हैं वहां मैं पहुंच जाती हूँ. तो बॉलीवुड की जो हॉरर फिल्म है ना, वो देखने का अलग ही मजा है, क्योंकि उसमें गाने भी आ रहे हैं, चटपटा रोमांस भी चल रहा है, तो मजेदार तो होती है. तो बॉलीवुड में जो मेरी फेवरेट हॉरर फिल्म्स हैं, दैट इज 1920. ओ माय गॉड, द क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स में जो हनुमान चालीसा है भाई साहब, गूसबम्स. देन 13 भी, इट्स द ओनली हॉरर फिल्म फ्रॉम इंडिया जिसने एक्चुअली में मुझे डराया था. इट्स अ साइकोलॉजिकल हॉरर और इसमें भूत नहीं है. एंड में बताते हैं क्या हो रहा था, बट अ वेरी गुड फिल्म. एंड देन भूत, उर्मिला की, if you have watched, to ye mere ko bahut usme bhoot se zyada urmila dekh ke lagta.
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 PM. The Big Mix with Avni, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
9: Hey, jaldi hata, tera khada ra, chal hata. Ha ha, jaldi hata, chinda. Ha ha.
0: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
1: It is 9:28 on the clock, and let's take a look sabse pehle at Dubai Lane Road E66 par aapko traffic milne wala hai, and this is going away from E11 heading south going towards Al Jadaf wala area. So ulti disha ka aaj traffic aap expect kar sakte hain. Then talking about E11, southbound traffic after Trade Center you'll find, and then 75 par going towards Dubai Frame heading east. On Sheikh Rashid Street, you'll find a bit of congestion. Also, 71 is congested going towards Dubai Mall. And then going towards E11, yani heading east also, you'll find a bit of congestion. Around that Green Planet wala area, thoda bahut unusual traffic hai. 44, we're going towards Business Bay from D3, you'll find 4-5 minute ki there. And there is a bit of northbound traffic aaj, unusually 311 per International City, per going towards Mirdif.
3: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
4: Big 106.2.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001 टका हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.
2: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस से मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
3: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
1: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। हैव यू गॉट व्हाट इट टेक्स टू से स्टॉप?
4: Are you kidding?
1: The Big Cash Call. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Powered by Big Ticket. Coming soon on Big 106.2.
0: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetour T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. Four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
5: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
1: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: Good morning, it is 9:42 on the clock and there is some unusual traffic this morning. Kahan par hai? 311 par International City se Alwar ka ki taraf jata hua. So northbound traffic this time of the day is a bit unusual. Be careful out there. 44 par going towards Business Bay from D3. Bit of congestion also in the opposite direction. Rose नॉर्थबाउंड होता है अलजदाब से 11 की तरफ होता है, आज 11 से अलजदाब की तरफ है थोड़ा साउथ बाउंड ट्रैफिक आउट देयर। देन E11 पर एज यू हेड साउथ फ्रॉम ट्रेड सेंटर यू फाइंड बिट ऑफ कंजेशन। आल्सो DIFC कंजेस्टेड एज एवर। 71 पर भी रोज की तरह ट्रैफिक है गोइंग टुवर्ड्स दुबई मॉल, देयर इज अ बिट ऑफ कंजेशन एट मैदान स्ट्रीट एज वेल दिस मॉर्निंग। अरकूज पर अरकूज 4th पे आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलेगा E44। इन केस यू स्पॉट समथिंग एंड इट्स सेफ टू कॉल, कॉल मी ऑन 800-1062.
0: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 10:10।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Breakfast with Sid. Now is Shahrukh's Residences by Danube on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: It is 10:24 on the clock, and this is that show that is absolutely unmissable. Can you imagine Abida Parveen and Kailash Kher, two of the most powerful, unique, mesmerizing voices coming together on stage on the same day at the same time? That's exactly what is going to happen. Pantheon presents Borderless Melodies featuring Abida Parveen, Kailash Kher, the legends live in concert on one stage. Unforgettable musical evening. Isse kehte, mark your calendars for the 13th of November, Dubai World Trade Center. Tickets are available now on Platinum List, so don't wait. Book yours today. It's brought to you by Hop Events, creating experiences that stay with you long after the music ends. Event made large, of course, by Big 106.2.
0: Big. Big 106.2. The Beat of Bollywood. The Big Breakfast now is Shahrukh's Residences by Danube. Fully furnished residences starting from 1.65 million dirhams. Live life, king style.
2: शादी हो या कोई भी त्योहार, बावरी और कोरा से दिखो शानदार हर बार. From graceful kurtas and majestic sherwanis to intricately crafted saris, lehengas and salwar suits, redefine ethnic style whether it's for him or her. Get festive, get fabulous at Bavri and Kora at Meena Bazaar, your favorite wedding shopping destination.
3: Golden dreams begin with Big Ticket.
4: A guaranteed 25 million dirham grand prize.
3: 5 consolation prizes, 200 grams of 24 karat gold each.
4: And more gold to win in weekly e-draws.
3: 3 chances to spin for up to 1 million dirhams with Big Spin.
4: Buy your ticket now at bigticket.ae.
5: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
0: The Big Breakfast now is Shahrukh's Residences by Danube. Brought to you by Zulekha Hospital. Your health matters. Listen to her every day.
6: Mugembo, khush hua.
7: निखिल, आपके हिंट्स हैं, मैं एंगेजमेंट से लेकर संगीत संध्या तक सेलिब्रेशंस में खूब नजर आती हूँ. मेरे मल्टीपल पीसेस होते हैं. देयर इज अ टॉप, देयर इज अ बॉटम एंड अ स्टनिंग दुपट्टा. मेहंदी हो या फिर सन डाउनर, मुझे फेस्टिव लुक के लिए स्टाइल किया जाता है. मैं फ्लोई हूँ, मैं ग्लैमरस हूँ, एंड यूजुअली मैं चोली के साथ पहनी जाती हूँ. व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट?
8: लहंगा.
7: मुझे लगा कि साड़ी या सलवार बोलोगे, बट लहंगा बोल ही दिया पहली बार में.
8: थैंक यू.
7: 500 दिरहम का वाउचर आपका हुआ courtesy of Bavri and Kora, and I'm telling you, वहाँ पे आपके लिए भी बहुत stunning कुर्ताज़ और शेरवानी है. So go and have a lot of fun. They've got a stunning collection.
0: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
1: It is 10:28 on the clock on this Wednesday ki subah. Let's take a look sabse pehle at the capital, Abu Dhabi. Aapko halka bulka traffic milega ab shuru hota hua. E11 heading north going towards Banias. Then there is Dubai Sharjah heading south going towards Dubai from Sharjah. आराम आराम से गाड़ी चलाइए, कोई जल्दी नहीं है, कोई ट्रैफिक भी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा. 311 पर राइट आफ्टर सिटी सेंटर जाइए, हेडिंग साउथ यू फाइंड 3-4 मिनट की देर. सेफ जोन और शारजा एयरपोर्ट के बीच में देयर इज ट्रैफिक. सेफ जोन से हेडिंग ईस्ट यू फाइंड अराउंड 5-6 मिनट की देर. E88 पर देन देयर इज S112 शारजा इंडस्ट्रियल 6 से ये कंजेशन शुरू होता है, एंड दिस इज हेडिंग ईस्ट. देन देयर इज बेरूत स्ट्रीट पर हेडिंग नॉर्थ एंड साउथ राइट आउटसाइड मदीना मॉल यू फाइंड अ बिट ऑफ कंजेशन. एंड फाइनली देयर इज 66. And this is southbound traffic after E11 going towards Al Jarrah.
9: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2.

पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। Big 106.2

0: ऐसे हम कह सकते हैं टू ऑल द पीपल दैट वी मीट इन ट्रैफिक इन द यूएई.
1: The Big Breakfast with Sid. Now is Shahrukh's Residences by Danube on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: Yeah, talking about traffic. There's an entire network that is being planned underground. एक तरफ जहाँ पे हम सबकी नजरें आसमान की तरफ टिकी हुई हैं कि you know flying taxis, vertiports and all of that. लेकिन RTA ने confirm किया कि there's an entire इक्का दुक्का सड़क नहीं, the entire transport network that's going to transport people, goods and services beneath, under the city. Because क्या है ना कि 7,000 journeys every minute, 11 million road journeys every day होती हैं, तो भाई ट्रैफिक तो होना ही, उसको ईज करने के लिए अब क्या सोल्यूशन है. नॉट जस्ट इन द स्काई बट ऑल्सो अंडरग्राउंड एन एंटायर नेटवर्क इज बींग प्लान्ड एंड द RTA एक्सपेक्ट्स द डे टाइम पॉपुलेशन टू डबल बाय 2040. दिस इज बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड एंड या द शो इज नॉट कॉल्ड द बिग ब्रेकफस्ट एनी मोर. इट इज शाहरुख रेसिडेंसेज बाय डैन्यूब एंड इनके बारे में क्या ही बताऊं मैं आपको, बिकॉज देर इज सो मच आउट देयर. द क्वेश्चन इज कि आपको क्या चाहिए. अगर आप कह रहे हो कि आपको वेलनेस फैसिलिटीज चाहिए, देव गॉट वेलनेस ओवर तीन लेवल के वेलनेस फैसिलिटीज हैं. 40+ एमिनिटीज आउट देयर, लॉन्जेविटी लाउंज एज वेल, 10 wellness and recovery experiences hain, infinity sky pool on the 33rd floor, there's a king's clubhouse, so live life king style, own your fully furnished waterfront residence from 1.65 million Shahrukh's Residences by Danube.
1: Big 106.2 fast track song of the hour brought to you by selfdrive.ae.

0: Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
2: What it takes to say stop.
3: Are you kidding?
0: The Big Cash Call. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Powered by Big Ticket. Coming soon on Big 106.2. To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है? दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं। दिल आखिर तू क्यों रोता है?
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: to play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix. Weekdays 1 to 5pm. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
1: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंट्स के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
0: The Big Mix मिस किया गया?
2: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
3: हाय मोनिका।
4: हाय।
3: आपकी रील्स देख कर हमें बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आपकी रील्स देखकर मैं मूवी देखने जाती हूँ, एंड आई फील ऑलमोस्ट सेम सेम। अच्छा बताओ भाई, हमें कुछ रिकमेंडेशंस फॉर बॉलीवुड फिल्म्स जो हॉरर जॉनर की हैं, जिसको देखकर एकदम दिल दहक जाए।
4: देखो, मेरे सारे फॉलोअर्स को पता है कि मुझे भूत प्रेतों की बातें करने में मजा बहुत आता है, तो जहाँ भूत दिखते हैं वहां मैं पहुंच जाती हूँ। तो बॉलीवुड की जो हॉरर फिल्म है ना, वो देखने का अलग ही मजा है, क्योंकि उसमें गाने भी आ रहे हैं, चटपटा रोमांस भी चल रहा है, तो मजेदार तो होती है। तो बॉलीवुड में जो मेरी फेवरेट हॉरर फिल्म्स हैं, दैट इज 1920। ओ माय गॉड, द क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में जो हनुमान चालीसा है भाई साहब, गूज़बम्प्स। देन 13 भी, इट्स द ओनली हॉरर फिल्म फ्रॉम इंडिया जिसने एक्चुअली में मुझे डराया था। इट्स अ साइकोलॉजिकल हॉरर और इसमें भूत नहीं है। एंड में बताते हैं क्या हो रहा था, बट अ वेरी गुड फिल्म। एंड देन भूत उर्मिला की, If you have watched, तो ये मेरे को बहुत, उसमें भूत से ज़्यादा उर्मिला देख के डर।
0: Cheer your midday mood, Monday to Friday, 1 to 5pm. The Big Mix with Avni, only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. That's my song.

0: Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 million dirhams. लिव लाइफ किंग स्टाइल.
0: Get ready to celebrate Diwali like never before. The Big Diwali Mela is back. On Saturday, 31st October, join Team Big at Oasis Center Dubai for a spectacular evening filled with fun, games, a fabulous fashion show, spin the wheel and loads of festive entertainment. Bring your family, bring your friends and come make unforgettable Diwali memories with Big 106.2. The Big Diwali Mela, where the celebrations are always big. Presenting sponsor, Papa John's, powered by Solite Battery. Venue partner, Oasis Mall Dubai. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network. To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 054-309-1062. Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, song of the hour, brought to you by insurancemarket.com.

0: करने की क्या बात है यार?
1: पहले पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टर्का
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी
1: है।
0: भी तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
0: मंडरा,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं
0: चलती।
1: तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: Okay, that's it.
2: Credit cards, loans, mortgages. Why make money complicated? Ask me, creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 054-309-1062. Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Start your morning like a superstar. The Big Breakfast now is Shah Rukh's Residences by Danube. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zuleika Hospital and Papa John's. Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: वेंसडे को मन कर गया लंच ना बहुत जल्दी कर ले। इट्स पास्ट 1 PM लंच हुआ नहीं हुआ बताओ मुझे 800-1062 पे कॉल करके।
2: Bollywood.

0: to The Beat of Bollywood.
1: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग गेट, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
2: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. Four exciting SUVs with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Big.
4: बर्फ पड़ने वाली है,
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
6: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
7: 36 डिग्रीज आउट देयर बट क्लाउडी वेदर है, उसके साथ साथ कल भी क्लाउडी था, लेकिन कहीं आपके यहाँ बारिश हुई है? बताओ मुझे, भेजो वीडियोस यार 0543091062 पर।
6: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2। बिग

0: Don't chase banks. Come to me. Credit cards, loans and mortgages at creditmarket.ae. Call 800 Alfred. Alfred simplifies money.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: बिग 106.2 से मैं हूँ अपनी आपके साथ. दिस इज द बिग मिक्स एंड मैं बात कर रही थी रिडल के बारे में जो कि मैंने देखी और मैं एकदम आउट हो गई, भूल गई कि आज वेंसडे है. वो रिडल सॉल्व तो मैंने कर ली लेकिन बहुत इजी थी, बहुत दिमाग लगाया मैंने लेकिन बहुत इजी सा आंसर था. वो रिडल मैं आपसे पूछने वाली हूँ. अ वुमन वॉज बॉर्न इन 1975 एंड डाइड इन 1975. शी वॉज 22 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी डाइड. हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या आप ये रिडल सॉल्व कर सकते हो? अ वुमन वॉज बॉर्न इन 1975, डाइड इन 1975, शी वॉज 22 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी डाइड. हाउ इज दिस पॉसिबल? अगर आपको इसका आंसर पता है बताओ मुझे 0543091062 पर. एंड कसम से यार, जब मैंने पहली बार सुनी ना ये, मेरे दिमाग के साथ यही हुआ था. आपने सॉल्व कर ली है बताओ मुझे 0543091062 पे आंसर करके. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: आगे पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया पिछले
1: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
2: Two splendid years of Insurance Market Metro Station. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. InsuranceMarket.ae.
3: मेरठ की एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली, एक परफेक्ट बहू और एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल दे.
4: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना? लो आ गई.
3: Amazon MGM Studios and Color Yellow Production present Nayi Naveli, starring Yami Gautam, Adinath Kothare, Sunita Rajwar and others. Releasing 16th October in cinemas. Distributed by Al Nisr Cinema Film. To win invites, keep listening to Big 106.2.
5: Listen to her every day.
6: Mugembo, khush hua.
7: निखिल, आपके हिंट्स हैं, मैं एंगेजमेंट से लेकर संगीत संध्या तक सेलिब्रेशंस में खूब नजर आती हूँ. मेरे मल्टीपल पीसेस होते हैं. देयर्स अ टॉप, देयर्स अ बॉटम एंड अ स्टनिंग दुपट्टा. मेहंदी हो या फिर सनडाउनर, मुझे फेस्टिव लुक के लिए स्टाइल किया जाता है. मैं फ्लोई हूँ, मैं ग्लैमरस हूँ एंड यूजुअली मैं चोली के साथ पहनी जाती हूँ. व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट?
8: लहंगा.
7: मुझे लगा कि साड़ी या सलवार बोलोगे, बट लहंगा बोल ही दिया पहली बार में.
8: थैंक यू.
7: 500 दिरहम का वाउचर आपका हुआ कर्सी ऑफ बावरी एंड कोरा. एंड आई एम टेलिंग यू, वहां पे आपके लिए भी बहुत स्टनिंग कुर्ताज एंड शेरवानी है. सो गो एंड हैव अ लॉट ऑफ फन. दे हैव गॉट अ स्टनिंग कलेक्शन.
1: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
9: Hey, jaldi hata tera khadana. Chal hata. Are jaldi hata.
1: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
10: आफ्टरनून ट्रैफिक रश जो है बिल्डअप हो रहा है अराउंड बिजनेस बे अल्बर्शा एंड द वन अप्रोचेस टू दुबई मरीना. अगर आप शारजा वाली साइड जा रहे हैं तब भी आपको ट्रैफिक मिल सकता है. कहीं और फंसे हो, लेट मी नो कॉल करके 800-1062 पर.
11: Now lease a brand new SUV from Jetort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.
12: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
1: The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: The Big Mix, brought to you by InsuranceMarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247.
1: सुबह उठते ही अपने आलीशान घर से सी फेसिंग गेट, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।

0: यार तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 से मैं हूँ अवनि आपके साथ एंड एक बहुत ही मजेदार सी रिडल मैंने पढ़ी थी. आई थॉट कि मैं आपसे पूछती हूँ एंड वी हैव गॉट अ कॉल, बट एक बार रिडल रिपीट कर देती हूँ मैं. अ वुमन वॉज बॉर्न इन 1975 एंड डाइड इन 1975, बट शी वॉज 22 ईयर्स ओल्ड वेन शी डाइड. How is this possible? Let's see who's on the call. Hello.
2: Hello.
1: Hello. Hello. Hi. कौन बात कर रहा है?
2: Hi, मैं दीक्षा बात कर रही हूँ.
1: Yes, दीक्षा, आपको रिडल सुनाई दी, वापस से रिपीट करूँ मैं?
2: जी, मुझे सुनाई दी. Actually, मेरे भांजे ने भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था.
1: Okay.
2: And इतनी छोटी उम्र के बच्चे से मैं हार गई, मुझे उसका जवाब नहीं आया.
1: क्यों, but क्यों now नहीं I know आया? The answer. Okay. Okay.
2: It's confusing. थी कैसे? I'm not good at math.
1: इसमें क्या मैथ सॉल्व करना है, बताओ आंसर क्या है?
2: So the answer is the woman was born and she died in room number 1975.
1: Exactly, that was room number 1975. तो आपने अपने भांजे को बोला क्या, बताया क्या, आंसर क्या दिया फिर?
2: Get back to you and then I googled. पर उसे गूगल करने से पहले ही उसने मेरा मजाक उड़ा के मुझे आंसर बता दिया.
1: उसने भी गूगल ही किया होगा, उसको कहाँ से पता होगा. और कौन सी मैथ्स लगी है यार यहाँ पे, इसमें तो हमें पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं लगानी पड़ी, ये क्या बात हुई.
2: काश मुझे उस टाइम भी ये पता होता और मैं कंफ्यूज ना होती.
1: बट इट वाज क्वाइट सिंपल. थैंक यू दीक्षा सो मच. बाय.
2: ओके, बाय बाय.
1: आप बताओ, आपको इसका आंसर पता था या नहीं पता था, बताओ मुझे 0543091062 पर. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: She's bubbly, bringing fresh energy and a whole lot of flavor. The Big Mix with Avni on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
1: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ. This is the Big Mix and in this hour आपका बच्चा बन सकता है, ये जीत सकता है टाइटल मिस्टर पटाखा एंड मिस फुलझड़ी का. The Big दिवाली मेला is back and इस फैशन शो में पार्टिसिपेट करवाने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज मैसेज करो बिग दिवाली स्पेस योर नेम और भेजो इस व्हाट्सएप नंबर पर 0543091062. लेट्स सी कि भाई आज कौन से बच्चे का नाम रजिस्टर होता है फॉर दिस बिग दिवाली मेला फैशन शो. कीप इट लॉक टू बिग 106.2.

0: याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। वक्त तो फिलहाल लंच में भी चाय पकौड़े खाने वाला था, लेकिन ये जो वेदर ने धोखा दिया है, मैं वापस से अपनी आईज लाचे पे आ चुकी हूँ।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: You know me from insurancemarket.ae. Now let me simplify your money too. Credit cards, loans, mortgages. Creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: Participate in the Big Diwali Mela contest for a chance to be part of the kids' fashion show and win exciting prizes. The Big Diwali Mela, presenting sponsor Papa John's, powered by Solite Battery. Venue partner Oasis Mall Dubai. Only on Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ. This is the Big Mix and this is your chance, actually your kids' chance to participate in this kids' fashion show. Big Diwali मेला हो रहा है 31st October Saturday को and यहाँ पर अपने बच्चे को participate करवाने के लिए all you have to do is message करो इस WhatsApp number पर, type Big Diwali space your name और WhatsApp number है 0543091062. इस पर भेजो ये मैसेज. एज क्राइटेरिया इज 5 से 15 साल की उम्र के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एंड इफ यू थिंक योर चाइल्ड हैव व्हाट इट टेक्स टू बी आवर मिस्टर पटाका और मिस फुलझड़ी, अभी मैसेज करो ना. दिवाली मेला पर जाना है 31st अक्टूबर को एंड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए पार्टिसिपेट करके मैसेज करोगे, मैं करूँगी आपको कॉल. उसके बाद पूछूंगी एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, उसका आंसर देना है आपको. एंड दैट्स हाउ यू रजिस्टर योर लिटिल वन फॉर बिग दिवाली मेला किड्स फैशन शो प्रेजेंटेड बाय पापा जॉन्स, पावर्ड बाय सोलाइट बैटरीज एट ओएसएस मॉल दुबई, आवर वेन्यू पार्टनर. कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: हॉलीवुड।
1: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग गेम, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम, और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
2: लगता है बर्फ पड़ने वाली है,
3: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
4: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
5: इट्स स्टिल मोस्टली क्लाउडी, लेकिन फिलहाल बारिश नहीं हुई है। द टेम्परेचर्स आर स्टिल होवरिंग अराउंड 36 डिग्री सेल्सियस। अगर होती भी है तो शायद काफी कम बारिश हो। इट स्टिल फील्स क्वाइट हॉट आउटडोर्स। अंदर बैठो तो एसी में ठंड लग रही है, बताओ।
4: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out or a message for someone special, send your name, space, your song name and your message to 0543091062. Big Unlimited, your request show from 11 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
6: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरज़ू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
4: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: Now lease a brand new SUV from Jetworth and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.
2: Participate in the Big Diwali Mela contest for a chance to be part of the kids fashion show and win exciting prizes. The Big Diwali Mela, presenting sponsor Papa John's, powered by Solite Battery. Venue partner Oasis Mall Dubai. Only on Big 106.2.
3: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
4: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड चल रहा है बिग दिवाली मेला कॉन्टेस्ट जहाँ पे आपके बच्चे ये टाइटल जीत सकते हैं मिस्टर पटाखा एंड मिस फुलझड़ी. और आज मैंने कॉल किया है बलजीत को. हाय बलजीत मैम, कैसे हैं आप?
5: मैं ठीक हूँ मैम, मैं बहुत हैप्पी हूँ.
4: बहुत हैप्पी हूँ. मैं पंजाबी जो पूछ दिया कितना तो ही.
5: मैं बहुत वधिया, तुसी के मैं हूँ.
4: बहुत वधिया. तुहाडी बेटी है बेटा है?
5: मेरी बेटी है मैम, सिमल स्वान.
4: ओके, कितने साल की है?
5: ओ 8 ईयर की है मैम.
4: अच्छा, आपको पार्टिसिपेट करवाना है उसे कि उसे खुद पार्टिसिपेट करना है?
5: तो खुद करना है मैम.
4: जा तो हमारे वैसे ही बचपन से चले होते हैं कि हमें तो जाना ही है स्टेज पे.
5: तो उसने लास्ट ईयर भी एक्चुअली किया था पार्टिसिपेट, तो अभी वो एवरी ईयर मांगती है जाने को.
4: स्टेज का चस्का है भाई, वो नहीं उतरता और उतरना भी नहीं चाहिए. आप क्या करते हो बलजीत मैम?
5: मैम मैं हाउसवाइफ हूँ एंड थोड़ा सा डिजिटल करती हूँ, स्किल सीख रही हूँ अभी.
4: अरे वाह, बहुत बढ़िया. अच्छा वैसे तो ना दुबई में मेरी पहली दिवाली होने वाली है.
5: यस आई नो मैम, बिकॉज मैं आपको फॉलो करती हूँ लॉन्ग टाइम से. जिस दिन आपका फर्स्ट डे था और आपकी वो इंटरव्यू थी, वो सब मैंने देखा.
4: सो स्वीट, थैंक यू सो मच. तो मुझे बताओ यार, दिवाली कैसे मनाया?
5: दिवाली मैम हमारी तो मोस्ट ऑफ ओएसिस मॉल में ही होती है. वीडियो आपके
4: इस बार भी वही होने वाली है, बिग दिवाली मेला 31st अक्टूबर सैटरडे को. अच्छा ठीक है, ओके. तो सिमर को पार्टिसिपेट करवाने के लिए आपको एक सवाल का जवाब देना. यू रेडी?
5: यस मैम.
4: ओके, What small traditional clay lamps filled with oil or ghee are lit during Diwali?
5: Diya ma'am.
4: Diya? Pakka?
5: Yeah.
4: Aur bhi to kuch karte hain?
5: Candle jalate hain, diya karte. Filled with? Kaise bola
4: aapne? Oil and ghee.
5: Oil and ghee. Diya hi hota hai ma'am. Wo jo mitti se banta hai.
4: मैं मान गई, मैं तो बस कंफ्यूज करने का ट्राई कर रही थी. दैट्स द करेक्ट आंसर एंड सिमर का नाम रजिस्टर हो चुका है फॉर बिग दिवाली मेला फैशन शो, जहां पर हो सकता है वो जीत सकती हैं मिस फुलझड़ी का टाइटल.
5: ओके मैम, थैंक यू सो मच. आप भी आओगे?
4: जी जी, सब आएंगे. मैंने बता दिया ना, मेरी पहली दिवाली दुबई में, मैं आप सबके साथ ही मनाने वाली हूँ ओएसिस मॉल दुबई में.
5: वी आर सो एक्साइटेड मैम. थैंक यू
4: बलजीत. बाय
5: बाय.
4: If your kids want to participate and उनको जीतना है ये टाइटल मिस्टर पटाखा और मिस फुलझड़ी का, आपको बस मैसेज करना है बिग दिवाली स्पेस योर नेम और इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है 0543091062. द एज क्राइटेरिया इज 5 to 15 ईयर्स. बिग दिवाली मेला प्रेजेंटेड बाय पापा जॉन्स, पावर्ड बाय सोलाइट बैटरीज एंड ओएसिस मॉल दुबई आवर वेन्यू पार्टनर. दिस टाइम दिवाली इज गोना बी बिगर. कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.
6: पूरे देश को पगला दूंगा. अभी तो कुछ पेश किया, सुनो. नाम या दाम?
7: नाम मनी फॉलोज माय ब्रदर.

0: क्या तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: अलका याग्निक का ट्रैक सॉन्ग का नाम था आजा सुनिए, लेकिन कहां पर बताती हूँ।
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ। This is the Big Mix and this time Diwali celebrations are getting bigger. और कैसे नहीं होती यार, मेरी दुबई में पहली दिवाली है and the Big Diwali Mela is back. आप भी join कर सकते हो team Big 106.2 को Saturday 31st October को at Oasis Mall Dubai, जहाँ पर ये शाम आपको देगी बहुत सारा fun games. Fabulous fashion show, spin the wheel and of course, loads of festive entertainment. आप अपनी family के साथ आ सकते हो, दोस्तों के साथ आ सकते हो, because ये वाली दिवाली जो है ना, bigger होने वाली है।
2: आँख मारे, आँख मारे, ओ लड़की, आँख मारे, आँख मारे।
0: Fashion show में अपने बच्चों को participate करवाने के लिए आप उनका नाम रजिस्टर कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर पर 0543091062। द बिग दिवाली मेला इज प्रेजेंटेड बाय पापा जॉन्स, पावर्ड बाय सोलाइट बैटरीज विद ओएसएस मॉल दुबई एज अ वेन्यू पार्टनर। द बिग दिवाली मेला वेयर सेलिब्रेशंस आर ऑलवेज बिग। कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2, पार्ट ऑफ फन एशिया'स ग्लोबल मीडिया नेटवर्क।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग गेट, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंट्स के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
0: बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग।

0: Made in Italy. Big 106.2. To be sorry, Tanya. हाथ में पॉम पॉम लेके लड़कों के लिए चिल्लाना मेरा स्टाइल नहीं है. वो मेरे लिए चिल्लाए, सीटी बजाए. That's not my thing.
1: She's bubbly, bringing fresh energy and a whole lot of flavor. The Big Mix with Avni on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
2: Big 106.2 से मैं हूँ अपनी आपके साथ. दिस इज द बिग मिक्स. 3 PM पीक लंच आवर टाइम हो चुका है. टाइम हो चुका है आप जीतो ओपन मूवी टिकट्स ये गेम खेलने के बाद, विच इज कॉल्ड एज खाओ पियो ऐश करो. आपको मुझे मैसेज करना है इस व्हाट्सएप नंबर पर 0543091062. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: इट्स पीक 3 PM पीक लंच आवर टाइम। टाइम है हमारा खाओ पियो ऐश करो खेलने का।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 93.2 The Beat of Bollywood.
1: सुबह उठते ही अपने आलीशान घर से सी फेसिंग बीच, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 million dirhams. Live life, king style.
2: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. Four exciting SUVs with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Have you got what it takes to say stop?
3: Are you kidding?
4: The Big Cash Call. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Powered by Big Ticket. Coming soon on Big 106.2. Big.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड इट्स टाइम वी प्ले खाओ पियो ऐश करो एंड आज हमारे साथ हैं अहमद. हाय अहमद.
2: हाय अवनी.
1: कैसे हैं आप?
2: जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया. लंच कर लिया आपने?
2: हाँ कर लिया.
1: अब तो काफी टाइम हो गया, अब तो कर लेना चाहिए था, है ना? क्या खाया लंच में?
2: जी आज मैंने खाया ओट्स.
1: ओट्स? ये ओवरनाइट ओट्स तो सुबह नहीं खाते ब्रेकफास्ट में?
2: नहीं, कभी कभी मैं लंच में खा लेता हूँ.
1: मैं बहुत ही कम ऐसे लोगों से मिलती हूँ जिनको ओट्स पसंद होते हैं. आपको पसंद है ओट्स?
2: हाँ ओट्स तो पसंद है हमको. इंडिया में सफोला ओट्स पसंद है और इधर जो है ओट्स विद ऑल दैट स्टफिंग खीमा वगैरह वगैरह. नॉन वेज भी बनाते हैं, वेज भी बनाते हैं.
1: मुझे लगता है कि मुझे आपसे ये कुकिंग स्किल्स लेने पड़ेंगे कि ओट्स को कैसे अच्छा बनाएं, क्योंकि मैं तो बस रोती धोती खा लेती हूँ. ये खाना पड़ रहा है.
2: एकदम स्वादिष्ट होते हैं. हमारे मैडम अच्छा बनाते हैं.
1: ओह नाइस. बट आई एम वेरी श्योर कि जो मेन्यू मैं आपको फिलहाल सौंपने वाली हूँ वो ओट्स से तो बहुत ही बेटर होगा एंड इट विल कंफ्यूज यू कि मैं क्या चूज करूँ. यू रेडी?
2: हाँ रेडी.
1: सो क्या चूज करोगे अहमद आप? मलाई कोफ्ता या कड़ी चावल?
2: मलाई कोफ्ता.
1: मलाई कोफ्ता या फिर मशरूम मसाला?
2: मशरूम मसाला.
1: मशरूम मसाला या सोया चाप?
2: मशरूम मसाला.
1: मशरूम मसाला या दाल मखनी?
2: दाल मखनी.
1: दाल मखनी या बटर चिकन?
2: बटर चिकन.
1: बटर चिकन या बटर चिकन बिरयानी?
2: बटर चिकन.
1: बटर चिकन या मटन बिरयानी?
2: मटन बिरयानी.
1: मटन बिरयानी या कढ़ाई चिकन?
2: मटन बिरयानी.
1: मटन बिरयानी या फिर तंदूरी चिकन?
2: मटन बिरयानी.
1: मटन बिरयानी या फिर चिकन मोमोज?
2: स्टिल मटन बिरयानी.
1: मटन बिरयानी के ऊपर क्या जाएगा, मटन बिरयानी या ओट्स?
2: अभी तो मटन बिरयानी, ओट्स नहीं.
1: आपने कहा था कि आपकी वाली बहुत अच्छी बनाती है, मुझे लगा शायद आप उनकी डिश ऊपर चूज कर लो.
2: नहीं नहीं, मटन बिरयानी में बेहतरीन लाजवाब बनाती है.
1: तो इसीलिए आपको चूज नहीं करना पड़ा. कि कोई बात नहीं, दोनों में ही उनकी तारीफ हो रही है. वाह वाह. अहमद आप ये कैरेक्टर है एक अबू बकर, उनको जानते हो?
2: अबू बकर? हाँ नाम तो सुना है लेकिन कभी इत्तेफाक नहीं हुआ उनकी सीरीज देखने का मुझे. लेकिन नाम से वाकिफ हूँ मैं.
1: वाकिफ है आप? मुझे लगता था कि आप देख रहे हैं और इसीलिए आप अपनी वाली की बहुत तारीफ कर रहे हैं. ग्रीन फ्लैग बन रहे हैं आप अबू बकर के जैसे.
2: नहीं नहीं नहीं, वो तो शुरू से उनके पकवान के खायल.
1: एंड अच्छा मुझे बताओ अहमद, आप सबसे अच्छा क्या बनाते हो?
2: मैं एक्चुअली हैदराबाद से हूँ. okay. तो एक हमारे पास एक डिश रहती है तहारी करके, तो वो मैं अच्छा बनाता हूँ.
1: क्या नाम है, क्या नाम है? बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है.
2: तहारी. TAHARI. तहारी. मटन की भी बनती है वो और चिकन की भी बनती है.
1: वेज में बनता है कुछ?
2: पुलाव जिसमें टमाटो और मटन पड़ते हैं और आलू भी पड़ता है.
1: ओ, तो मैं वेज खा सकती हूँ?
2: हाँ वेज में भी. हाँ वेज में बनती है वो.
1: चलो आपने कभी बनाया नहीं है, बट ट्राई करना, अगर कभी वेज में बन जाए तो मुझे थोड़ी सी भेज देना क्योंकि मैं हैदराबाद कभी नहीं गई हूँ.
2: अच्छा अच्छा.
1: ओके थैंक यू सो मच अहमद फॉर कॉलिंग.
2: ओके थैंक यू.
1: ओके बाय. If you want to play Gaopi Ash Karo with me, all you have to do is give me a message on this WhatsApp number 0543091062 and you can also win open movie tickets.

0: या कोई भी त्योहार, बावरी और कोरा से दिखो शानदार हर बार। From graceful kurtas and majestic sherwanis to intricately crafted saris, lehengas and salwar suits, redefine ethnic style whether it's for him or her. Get festive, get fabulous at Bavri and Kora at Meena Bazaar, your favorite wedding shopping destination. Listen to her every day.
1: Mugembo, khush hua.
2: निखिल, आपके हिंट्स हैं, मैं एंगेजमेंट से लेकर संगीत संध्या तक सेलिब्रेशंस में खूब नजर आती हूँ। मेरे मल्टीपल पीसेस होते हैं, देयर इज अ टॉप, देयर इज अ बॉटम एंड अ स्टनिंग दुपट्टा। मेहंदी हो या फिर सन डाउनर, मुझे फेस्टिव लुक के लिए स्टाइल किया जाता है। मैं फ्लोई हूँ, मैं ग्लैमरस हूँ एंड यूजुअली मैं चोली के साथ पहनी जाती हूँ। व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट?
3: लहंगा।
2: मुझे लगा कि साड़ी या सलवार बोलोगे, बट लहंगा बोल ही दिया पहली बार में।
3: थैंक यू।
2: 500 दिरहम का वाउचर आपका हुआ कोरेसी ऑफ बावरी एंड कोरा। एंड आई एम टेलिंग यू, वहां पे आपके लिए भी बहुत स्टनिंग कुर्ताज एंड शेरवानी है। सो गो एंड हैव अ लॉट ऑफ फन, दे हैव गॉट अ स्टनिंग कलेक्शन।
0: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
4: यार तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
5: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
0: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
8: Still quite hot outdoors. The temperature is still hovering around 38 degrees. लेकिन गर्मी लग रही है, feels like 45 at least, क्योंकि humidity काफी ज़्यादा हो चुकी है।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 से मैं हूँ Avni आपके साथ. This is the Big Mix and too good to be true. एक ऐसा term है trait. कैरेक्टरिस्टिक कि जो भी मुझे बोल देता है ना मैं बोलती हूँ अब मैं क्या कर सकती हूँ यार. इट्स नेवर नेवर नेवर ट्रू. और नई नवेली की भी यही कहानी है. 16th अक्टूबर दिस वीकेंड रिलीज होने वाली है ये फिल्म स्टारिंग यामी गौतम इन द मेन लीड्स. टू गुड टू बी ट्रू बहू है यार. मतलब हर काम कर देती है, पैर छूती है, हाथ लगाती है, भाई बुजुर्गों की नीज ठीक हो जा रही हैं. अब ये टू गुड टू बी ट्रू है या फिर ये कोई शक्तियां हैं जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, दैट्स द फिल्म अबाउट. बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है क्योंकि एक तो यार हमने पहली बार यामी गौतम को ऐसे रोल में देखा है एंड ऑल दिस वाइल हमें चाहिए यार ऐसी कॉमेडी फिल्म. एंड दिस वीकेंड इट्स गोना रिलीज इन थिएटर 16th अक्टूबर नई नवेली. देख के बताएंगे कैसी लगती है. अंडरलाइन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: Big Mix. Brought to you by InsuranceMarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247.
1: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. Four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: Subah utte hi, apne aalishan ghar se sea facing view. Phir infinity pool, ya gym, aur seedha spa and recovery. Ek game paddle ya tennis. शाम में क्लबहाउस और रात फैमिली के साथ और रेजिडेंट्स के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है. शाहरुख्स बाय डैन्यूब फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स. लिव लाइफ किंग स्टाइल.

0: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: कौन है वो जिससे जाके आप अपने सारे फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हो?
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बिग 106.2 से मैं हूँ अवनि आपके साथ, दिस इज द बिग मिक्स। एंड अपने शॉपिंग एक्सपेंसेस की बात नहीं करी मैं, वो तो कांस्टेंट रहेंगे, वो आते जाते रहेंगे, लेकिन जब भी मुझसे कोई पूछ लेना कि कंपेयर करो यार, चलो क्रेडिट कार्ड बताओ कौन सा बेटर है, तो आई थिंक सो आपकी भी यही हालत होती होगी। बट अगर सच में आपको जानना है, यू ऑलरेडी नो अल्फ्रेड फ्रॉम insurancemarket.ae एंड नाउ अल्फ्रेड कैन एक्चुअली हेल्प यू कंपेयर क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स एंड मॉर्गेजेस टू। आपको बस विजिट करना है creditmarket.ae पर, या फिर आप सिंपली कॉल भी कर सकते हो 800 अल्फ्रेड पर। बाकी मर्सी हम सिर्फ बातचीत के लिए रखते हैं। कमिंग अप नेक्स्ट, कीप इट लॉक टू बिग 106.2।

0: में पॉम पॉम लेके लड़कों के लिए चिल्लाना मेरा स्टाइल नहीं है। वो मेरे लिए चिल्लाए, सीटी बजाए, दैट्स मोर माय थिंग।
1: She's bubbly, bringing fresh energy and a whole lot of flavor. The Big Mix with Avni on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
2: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ। This is the Big Mix and आज है बहुत बड़ा दिन। Dubai's Global Village Season 31 आज खुलने वाला है 6 बजे। Under the theme A More Wonderful World, a lot coming up your way about Global Village this time reopening Season 31. What is it about? बताती हूँ in a bit. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 4:06।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: इट्स 36 डिग्रीज आउट देयर, लेकिन फिलहाल काफी गर्मी लग रही है। बारिश की आवाज सुनाई दी थी कि होगी, फोरकास्टेड है, लेकिन फिलहाल मेरे सामने तो नहीं हुई है, पर स्टिल बारिश की आवाज सुन के यार दिल को सुकून तो मिल ही जाता है।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big

0: 101.2 The Beat of Bollywood.
1: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। आपके ब्लैक हेड भी हटा सकती हूँ मैं। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
0: The Big Mix with Avni on Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: का नाम था जादू, और यहाँ जाते भी लगता है यार कि ये क्या जादू कर रखा है।
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बिग 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ। दिस इज द बिग मिक्स एंड मैं बात कर रही हूँ ग्लोबल विलेज की सीजन 31 जो आज शाम 6 बजे खुलने वाला है। एंड दिस टाइम द थीम इज अ मोर वंडरफुल वर्ल्ड।
2: क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया?
0: हो जाओगे। ग्लोबल विलेज जो है मे तक खुला रहेगा, ब्रिंगिंग टुगेदर मोर देन 90 कल्चर्स थ्रू इंटरनेशनल पैवेलियंस, फूड, शॉपिंग एंड लाइव एंटरटेनमेंट। नए शोज भी हैं, नए अट्रैक्शंस इंक्लूड द बॉलीवुड आइडल म्यूजिकल शो, बैंक हीस्ट एक्रोबैटिक परफॉर्मेंस एंड द अपकमिंग टोक्यो रश रोलर कोस्टर एज वेल। वीकडेज की टिकट 25 दिरहम्स है, वीकेंड्स की 30 दिरहम्स है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊँ, मुझे अभी ही पहुंचाना है वहां पे। 6 बजे खुलने वाला है सीजन 31 ऑफ ग्लोबल विलेज। आई एम एक्साइटेड। घूमने फिरने की बात हो और मैं मना कर दूं, जस्ट पॉसिबल, कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।
3: एक्शन।

0: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता। फिर अपन 1001 हिस्ट्री बनाएंगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग गेट, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम, और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस, और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स, जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 million dirhams. लिव लाइफ किंग स्टाइल।
3: Wow, your hair color looks stunning.
4: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
3: Yeah, right.
4: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
3: Really?
4: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
3: I'm buying it right now.
4: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
1: The Big Jill.
5: All my favorite music in one spot.
1: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Nothing feels wrong, and that's exactly why you should get checked. This October, give yourself a little peace of mind. Pink It Now is back for its 15th year at Zulekha Hospital. Women over 40 can register for a specialist consultation and mammogram for just 299 dirhams. Because looking after yourself isn't selfish. Call 600-52-442 or WhatsApp us. Pink It Now. Don't wait to feel something. Zulekha Hospital, your health matters.
6: यार तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
7: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
1: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Now lease a brand new SUV from Jetord and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ और मैं पूछ रही हूँ यार आपसे कब तक आप अपने YouTube पर अपने फेवरेट डुओ सिंगर्स के रीमिक्सेस देखोगे when you actually have a chance to witness it live. Two legends, one stage. Dubai, are you ready for two legendary voices जो आने वाली हैं एक ही साथ एक ही स्टेज पर? Pantheon presents Borderless Melodies featuring the legendary Abida Parveen and Kailash Kher live in concert.
3: Oh

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
5: Again? The car's not starting.
6: I think the battery's gone.
5: Then stop guessing. Get Solite batteries.
6: What's special?
5: Premium Korean tech. Zero maintenance. Perfect for this heat.
6: Wow, that's smooth. Where do I find it?
5: Auto Pro Fast Track Dialer Battery, Auto Studio, any major auto store. Solite batteries. Power you can trust. Distributed by AMAP Group.
7: Missed your morning buzz?
8: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
7: ये सुनो।
9: शेठ भाई, गुड मॉर्निंग। एकदम मस्त हैं, आप कैसे हैं?
10: तबीयत आवाज से तो आप बिल्कुल ही सही लग रहे हो, लेकिन जवाब जो आपने मुझे पहले दिया था उससे कुछ क्रॉस कनेक्शन हो गया एंड भाभी जी को आपको करेक्ट करना पड़ा। ये अक्सर होता है, कितनी बार भाभी जी आपको करेक्ट करती हैं लाइफ के अंदर?
9: अभी तो बेटर हाफ है मेरी वो। बेटर है।
10: कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंसी हो रही है भाई, बता रहा हूँ थोड़ा बच के।
9: हाँ बिल्कुल, आज से थोड़ा सा मैं भी अपनी सेल्फ ट्रेनिंग पे ध्यान रखूंगा।
10: थोड़ा ध्यान रखो भाई, थोड़ा ध्यान रखो नजरें। हाँ, बट यू शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हाइल ड्राइविंग। लेकिन चक्कर ये कि मैंने
9: हाँ मतलब तो उन्हीं का होता है, पिक्चर तो उन्हीं को देखनी होती है।
10: मतलब आप कहना चाह रहे हो कि आप आंखें बंद करके पिक्चर हॉल में बैठने वाले हो?
9: हमें तो बस उन्हें जाकर के कहते ना वो एक स्नैक्स का अरेंजमेंट करना है, गाड़ी में बैठा के उनको लेके जाना है, देखो वापस लेके आना है।
10: देखो ये हाय बेचारा का जो नाटक है ना, ये मैं कई सालों से करते आ रहा हूँ इस दुनिया का। मतलब आई बिन देयर डन दैट ब्रो, तब मेरे को पट्टी मत बनाओ, ठीक है ना। मजा तो राजेश भाई को आने वाला है सिनेमा हॉल के अंदर, लेकिन हाय बेचारा, ओ माय गॉड, हमारा तो काम धर्म पत्नी को मिसेज को खुश करना है भाई, हमारा काम सिर्फ आपको ले जाना पहुंचाना है और घर वापस लेके आना है सही सलामत है, फिर पॉपकॉर्न समोसा ये सब आपकी खिदमत में हाजिर है हम लोग हैं।
9: अभी सुन नहीं रही है तो अपने बयान निकाल रहा हूँ।
10: नहीं वो पता नहीं है, सुन रही है, आवाज उन तक पहुंच रही है, आप टेंशन मत लो, आज इसका जवाब आपको मिलेगा मिलेगा। शाम को बताना मुझे कल सुबह कि आज शाम आपकी कैसी गुजरी है ना।
2: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM to 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
11: Evening rush has started already. Sheikh Zayed Road E11 par aapko traffic mil jayega between Trade Centers, Zabil Business Bay, Albert Shan towards Dubai Marina. Alkhel Road E44 par there are slow stretches connecting Rasulpur Maidan, Dubai Hills Estate and Albert Shah. Sheikh Mohammed bin Zayed Road E311 par Dubai Silicon Oasis International City, Albert Khan towards Sharjah aapko extra time leke chalna padega. E611 Emirates Road par दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क एंड शारजा वाली साइड अगेन हैवी ट्रैफिक है, कहीं और फंसे हो लेट मी नो कॉल करके 800-1062 पर।
4: Now lease a brand new SUV from Jetort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: Big 106.2. Big

0: Credit cards, loans, mortgages. Why make money complicated? Ask me, creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
2: The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ. This is the Big Mix. फिलहाल हो रहा है मेरे जाने का टाइम, पर आपको पता है ना, मैं हमेशा रहती हूँ Instagram पे ऑनलाइन. All you have to do is give us a follow on 106.2 Big FM का Insta handle, या फिर आप मुझे भी follow कर सकते हो अवनी यार के पेज पर. जा रही हूँ, लेकिन छोड़ के जा रही हूँ आपको गेड़ी वाले गानों के साथ. But you know what makes a perfect drive? Just not the perfect songs. लेकिन perfect drive भी जरूरी है, smooth ride भी जरूरी है. Now you can actually lease a brand new SUV from Jator and Skoda with prices starting from 1999 dirhams per month for a 12-month plan. सिर्फ विजिट करना है selfdrive.ae पर and TNC apply. कल मिलती हूँ फिर से द बिग मिक्स 1 to 5. Until then, keep it locked to Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 30% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to your nearest Kalyan Jewelers store today to grab this offer. Conditions apply.
1: Your golden opportunity with Big Ticket.
2: This month, we have a 25 million dirham guaranteed grand prize.
1: Five prizes, 200 grams of 24 karat gold bars.
2: Plus, even more gold in our weekly e-drawers.
1: Three big spin participants could each win up to 1 million dirhams in cash.
2: Make your golden move. Buy now at bigticket.ae.
3: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
4: Subah utte अपने आलिशान घर से सी फेसिंग बीच, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
5: Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 5:09।
2: Bollywood.

0: 93.2, the beat of Bollywood.
1: मेरठ की एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली, एक परफेक्ट बहू और एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल दे।
2: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई।
1: Amazon MGM Studios and Color Yellow Production present नई नवेली, starring यामी गौतम, आदिनाथ कोठारे, सुनीता राजवर and others. Releasing 16th October in cinemas. Distributed by Al Nisr Cinema Film. To win invites, keep listening to Big 106.2.
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae. Get ready to celebrate Diwali like never before. The Big Diwali Mela is back. On Saturday, 31st October, join Team Big at Oasis Center Dubai for a spectacular evening filled with fun, games, a fabulous fashion show, spin the wheel and loads of festive entertainment. Bring your family, bring your friends and come make unforgettable Diwali memories with Big 106.2. The Big Diwali Mela, where the celebrations are always big. Presenting sponsor, Papa John's, powered by Solite Battery. Venue partner, Oasis Mall Dubai. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network. The Big Jill.
3: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
4: फिलहाल शोइंग 38 मिनट डिले ऑन शेख जाहिद भट्टी। तो बस शुरुआत है, आ गया कि देखो होता है क्या, हैवी ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर। अगर आप फहीदी के आसपास हैं, देर इज ट्रैफिक एट द मोमेंट नियर नाइफ देरास। इफ यू गोइंग टूवर्ड्स नहाता, इट्स गोइंग टू टेक यू एन आर एंड 5 मिनट्स। बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक है दिस ट्रैफिक राइट नाउ नियर फेस्टिवल सिटी, दुबई डिजाइन डिस्ट्रिक्ट, शेख मोहम्मद बिन जायद अगेन मोरिफ टू मुहेसना, अ बिट पैक्ड ओम रमूल के पास भी आपको स्लो मूविंग ट्रैफिक मिलेगा बम्पर टू बम्पर। इफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स ओम सुकीम राइट Now it is slow moving, nahi stand still Manara Street par. Anything else you'd like to report, mujhe bataiye 800-1062 par.
5: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2.
6: Tum bimar ho?
7: No.
6: To leti kyun?
7: मेरे बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पल्स उनको कंट्रोल करते हैं।
6: कैसे हैं सेंसेशंस?
7: सेंसेशंस जैसे सरसराहट, सनसनाहट, दिल को धड़क धड़मगा, धड़फड़ाहट, धड़थराहट, टपक पहाड़, धड़फड़ाहट, धड़थराहट, टपक पहाड़, धड़फड़ाहट, धड़थराहट, टपक पहाड़, धड़फड़ाहट, धड़फड़ाहट, धड़फड़ाहट, धड़फड़ाहट, धड़फड़ाहट,

0: 5:42 and हमें बड़ी fantastic female singer मिल गई है for the karaoke. She's on the line and we'll get to hear her in just a bit. वैसे coming up. गरबा डांडिया का माहौल है. The festive season is here and the music has to match your vibe coming up in just a bit. इसी के साथ
1: रूप दियो रानी को बरांडे को संभालने किसी मन चले का तुझ पे आ गया
0: जो जब हम जाते थे ना गरबा खेलने ऐसे हमारे होते थे टॉल टशन. अब तो क्या है कि गरबा खेलने की हिम्मत ही नहीं, मेरे तो घुटने दर्द करने लगे हैं फिलहाल. दिस वन कमिंग अप इन जस्ट अ बिट.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, यह है Big Thrill with Mansi. While you're stuck in the jam, we jam here with the karaoke आवाज. आपकी concert, आपका audience, Mary, and joining us is Hema. And the moment I answered the call, मैंने इतना घिसा पिटा joke मारा ना, Hema, you must be tired of this. जया और सुषमा सबकी पसंद. यार क्या मार्केटिंग की इतने सालों बाद भी. व्हेनेवर यू लिसन और व्हेनेवर यू थिंक ऑफ हेमा, जया और सुषमा, यही याद आता है. तो हेमा, आर यू एंजॉयिंग नवरात्रि? आर यू गरबोइंग बोल रही हूँ मैं. आर यू गोइंग फॉर गरबा एंड डांडिया?
2: नो नो, आई एम नॉट.
1: सो व्हाट आर योर प्लान्स अदरवाइज ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन?
2: टू बी ऑनेस्ट, लाइक इन दुबई द प्लान्स आर मोर द सेम, डाइन आउट और
1: देखो नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि चल रही है. हेमा जी की बातें सुने आप, बच्चे और बच्चों के मम्मी पापा, हेमा जो है वो अलग ही जोन में है फिलहाल. सो यू ऑलरेडी गेस द सॉन्ग एंड फिलहाल हम हेमा की आवाज में सुनेंगे
0: karaoke.
1: Okay.
2: ओ जाना ये जाना ये दिल तेरा दीवाना, जहाँ भी तू जाए तेरे पीछे आए ये तेरा आशिक पुराना.
1: प्रोफेशनल सिंगर हेमा, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वॉइस, और कितना अच्छा गाया है.
2: थैंक यू सो मच.
1: सो यू एंजॉय सिंगिंग?
2: यस आई डू.
1: एंड यू सिंग रियली वेल. सो डू यू लाइक ट्रेन?
2: नो, इट्स जस्ट लाइक बाथरूम सिंगर.
1: वेरी नाइस.
2: फॉर योर ओन पीस.
1: बहुत अच्छा है आपको, मतलब अगर कोई बाथरूम सिंगर्स की कैटेगरी होगी आप अवार्ड लेके जाओगे, आपने बहुत अच्छा गाया है. बट लेट्स टॉक अबाउट दिस सॉन्ग, सलमान खान.
2: Yeah, I know. Very good looking at that point.
1: हिमा, कितने आशिक थे आपके, दीवाने, इतनी अच्छी आवाज है आपकी.
2: मेरे?
1: हाँ.
2: नहीं
1: झूठ.
2: झूठ.
1: No, I'm talking about the old gold times.
2: झूठ बोलो या सही?
1: सच बोलो यार, सच बोलो.
2: काफी सारे थे.
1: मुझे लगा ही. So were you one of those के सबको बस अपने घर के बाहर गेड़िया लगवाना?
2: Exactly. That was the fun actually.
1: हाँ, टाइम भी पता होता था हमें कि कौन कितने बजे आने वाला है. अलग अलग गाड़ियों की आवाजें पहचान लेते थे, दौर ही अलग था कुछ. बट
2: I know.
1: Fun times and what a fun song. Thank you so much, Hema, for entertaining us and you have a great evening.
2: You too. Thank you.

0: I can't wait.
1: Okay, okay.
0: Yes!
2: Here you go, sir. Enjoy your Papa John's new pan pizza.
0: Whoa, cheese all around.
1: And edge-to-edge toppings.
0: And crispy garlic parmesan crust, too.
1: Let me try.
0: Order your own.
2: Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Now lease a brand new SUV from Jetour and Skoda, with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
4: Have you got what it takes to say stop?
5: Are you kidding?
6: The Big Cash Call. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Powered by Big Ticket. Coming soon on Big 106.2.
7: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी. एक गेम पैडल या टेनिस. शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ. और रेजिडेंट्स के लिए प्राइवेट यॉट्स, जहां सफर ही मंजिल बन जाता है. शाहरुख बाय डैन्यूब. फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स. लिव लाइफ किंग स्टाइल.
4: बिग 106.2. दैट्स माय सॉन्ग.

1. I remember the first time I came to Dubai and I was so excited to visit Global Village. My mom was here. We had so much food and bahut sari shopping ki thi. And since then, I've been a fan. And Global Village will remain open until May 2027. So we've got a lot of time to visit the place multiple times and enjoy our favorite food and shop at our favorite pavilions. फिलहाल अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना चाहते हैं ग्लोबल विलेज स्पेशल बसेस भी हैं सारी डिटेल्स दूंगी ऑल्सो दिस आवर ऑफ द शो वी आर प्लेइंग द 5 सेकंड रूल इट्स अ फन गेम आपको मिलते हैं 5 सेकंड मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज तीन चीजें बतानी होती है 5 सेकंड के अंदर पता है मुझे साउंड इजी बट आसान है नहीं अगर खेलना है चैलेंज एक्सेप्ट किया है कॉल करो 800-1062 पर

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक, गिव मी द टाइम राइट नाउ, 6:09।
2: Bollywood.

0: big. आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. हैव यू गॉट व्हाट इट टेक्स टू से स्टॉप. The Big Cash Call. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Powered by Big Ticket. Coming soon on Big 106.2.
1: सुबह उठते ही अपने आलीशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी. एक गेम पैडल या टेनिस. शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ. और रेजिडेंट्स के लिए प्राइवेट यॉट्स, जहां सफर ही मंजिल बन जाता है. शाहरुख्स बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स. लिव लाइफ किंग स्टाइल.
2: प्री बुक योर ज्वेलरी एट कल्याण ज्वेलर्स एंड अवेल गोल्ड रेट प्रोटेक्शन. ऑल्सो एंजॉय 30% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस. ऑफर ओनली टिल 25th October. रश टू योर नियरेस्ट कल्याण ज्वेलर्स स्टोर टुडे टू ग्रैब दिस ऑफर. कंडीशंस अप्लाई.
0: Start your morning like a superstar. The Big Breakfast now is Shahrukh's Residences by Danube. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital and Papa John's. Missed your morning buzz?
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे पापा.
0: ये सुनो.
4: शेठ भाई, good morning. एकदम मस्त है, आप कैसे हैं?
5: तबीयत आवाज से तो आप बिल्कुल ही सही लग रहे हो, लेकिन जवाब जो आपने मुझे पहले दिया था उससे कुछ क्रॉस कनेक्शन हो गया. एंड भाभी जी को आपको करेक्ट करना पड़ा, ये अक्सर होता है. कितनी बार भाभी जी आपको करेक्ट करती हैं लाइफ के अंदर?
4: अभी तो बेटर हाफ है मेरी वो. बेटर है.
5: कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंसी हो रही है भाई, बता रहा हूँ थोड़ा बच के.
4: हाँ बिल्कुल, आज से थोड़ा सा मैं भी अपनी सेल्फ ट्रेनिंग पे ध्यान रखूंगा. से
5: थोड़ा ध्यान रखो भाई, थोड़ा ध्यान रखो नजरें. हाँ, बट यू शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हाइल ड्राइविंग. लेकिन चक्कर ये कि मैंने
4: मतलब तो उन्हीं का होता है, पिक्चर तो उन्हीं को देखनी होती है.
5: मतलब आप कहना चाह रहे हो कि आप आंखें बंद करके पिक्चर हॉल में बैठने वाले हो?
4: हमें तो बस उन्हें लेकर के, कहते ना वो, एक स्नैक्स का अरेंजमेंट करना है, गाड़ी में बैठा के इनको लेके जाना है, देखो वापस लेके आना है.
5: देखो ये हाय बेचारा का जो नाटक है ना, ये मैं कई सालों से करते आ रहा हूँ इस दुनिया का. मतलब आई हैव बीन देयर डन दैट ब्रो. तो मेरे को पट्टी मत बनाओ, ठीक है ना. मजा तो राजेश भाई को ही आने वाला है सिनेमा हॉल के अंदर. लेकिन हाय बेचारा, ओ माय गॉड, हमारा तो काम धर्म पत्नी को, मिसेज को खुश करना है भाई. हमारा काम सिर्फ आपको ले जाना, पहुंचाना है और घर वापस लेके आना है सही सलामत है. फिर पॉपकॉर्न समोसा ये सब आपकी खिदमत में हाजिर है हम लोग हैं.
4: अभी सुन नहीं रही है तो अपने भजन निकाल रहा हूँ.
5: नहीं वो पता नहीं है, सुन रही है, आवाज उन तक पहुंच रही है. आप टेंशन मत लो, आज इसका जवाब आपको मिलेगा मिलेगा. शाम को बताना मुझे कल सुबह कि आज शाम आपकी कैसी गुजरी है ना.
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
8: 33 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 29. गुड टाइम्स एंड गुड वेदर अहेड. फिलहाल ह्यूमिडिटी 48% पर.
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट अलरास.me. बिग 106.2.

0: काश कुछ ऐसा ही होगा। दिल बोलेगा कि रिस्क लेते हैं, लेकिन दिमाग बोलेगा कि नहीं, रुक जाते हैं।
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Yes, I'm talking about the big cash call, which is coming your way from Monday, 19th of October. Your chance to win cash worth 30,000 dirhams. जैसा मैंने कहा, दिल बोलेगा कि रिस्क लेते हैं, लेकिन दिमाग बोलेगा कि रुक जाते हैं। अब ये दिल और दिमाग की लड़ाई है। The big cash call is back, starting this Monday. Presenting sponsor is Skechers. Title sponsor Papa John's, powered by the Big Ticket. So stay tuned. आपके पास मौका है to win some big cash right here on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
2: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो। नाम या दाम?
3: नाम। Money follows my brother.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 7:09।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग गेम, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
4: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq.

0: You know me from insurancemarket.ae. Now let me simplify your money too. Credit cards, loans, mortgages. Creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, I'm Mansi. This is The Big Thrill. And जिंदगी ना हमें बहुत कम मौके देती है to witness magic. अपनी आंखों के सामने जादू होते हुए देखना. और ये जादू होगा on the 13th of November when we get to witness two legendary voices on one stage. I'm talking about the queen of Sufi music.
3: ओ तेरे इश्क नचाया
2: एंड उसी स्टेज पर आविदा जी के साथ होंगे कैलाश खेर.
4: तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं.
2: Like I said, जिंदगी बहुत कम मौके देती है टू विटनेस प्योर मैजिक एंड दिस इज वन सच मौका विच आई थिंक यू डोंट वांट टू मिस. गेट रेडी टू विटनेस टू पावरफुल लेजेंडरी वॉइसेस ऑन द सेम स्टेज. मैं बात कर रही हूँ आबिदा जी और कैलाश खेर की. मार्क योर कैलेंडर्स फॉर द 13th ऑफ नवंबर. पैंथियन आपके लिए लेकर आए हैं बॉर्डरलेस मेलोडीज एट द दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. बुक योर टिकट्स राइट नाउ, दे आर अवेलेबल प्लैटिनम लिस्ट पे. ब्रॉट यू बाय हॉप इवेंट्स, क्रिएटिंग एक्सपीरियंसेस दैट स्टे विद यू लॉन्ग आफ्टर द म्यूजिक एंड्स. दिस इवेंट इज मेड लार्ज बाय अस, बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हां जी, यह है बिग थ्रिल. मैं हूं मानसी. फेस्टिव सीजन है, वेडिंग सीजन आने वाला है. यू लव मी राइट नाउ बिकॉज़ आई एम गिविंग यू अ 500 दिरहम का वाउचर कर्सी ऑफ बावरी एंड कोरान. दे हैव गॉट अ लवली कलेक्शन. आई वाज देयर दिस आफ्टरनून. तो मेहंदी हो, हल्दी हो, करवा चौथ हो, भाई दूज हो, विल सॉर्ट यू आउट. Beautiful, beautiful set of lehenga, sari, shararas for men. They've got lovely kurta, sherwani. You'll find something very, very special for your special occasion for the coming festivals there. So right now, giving you a chance to win a 500 dirham ka voucher courtesy of Bavri and Kora. They are located at Meena Bazaar. Very, very simple. Participate karne ke liye ek WhatsApp karna hai. Bavri and Kora 054-309-1062 par.
0: Participate in Bavri and Beju Bavra. Guess the look contest and get a chance to win 500 dirhams Kora and Bavri voucher. Only on Big 106.2. Big 106.2. Fast track song of the hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: it takes to say stop.
1: Are you kidding?
2: The Big Cash Call. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Powered by Big Ticket. Coming soon on Big 106.2.
3: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. Four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
4: Subah utte hi, apne aalishan ghar se sea facing gate. Phir infinity pool, ya gym, aur seedha spa and recovery. Ek game paddle ya tennis. शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ और रेजिडेंट्स के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है. शाहरुख बाय डैनियल फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स. लिव लाइफ किंग स्टाइल.
5: आई कैन't वेट.
6: ओके ओके 3, 2, 1.
5: यस.
7: हियर यू गो सर, एंजॉय योर पापा जॉन्स न्यू पैन पिज़्ज़ा.
5: Cheese all around.
6: And edge-to-edge toppings.
5: And crispy garlic parmesan crust, too.
6: Let me try.
5: Order your own.
7: Papa John's. Better ingredients, better pizza.
0: The Big Mix. Miss kiya gaya?
8: Inkar hi nahi sakte. Chaho bhi to nahi kar sakte.
9: Hi, Monica.
10: Hi.
9: Aapki reels dekh kar hume bahut achha lagta hai because aapki reels dekh kar main movie dekhne jaati hu and I feel ऑलमोस्ट सेम सेम. अच्छा बताओ भाई, हमें कुछ रिकमेंडेशंस फॉर बॉलीवुड फिल्म्स जो हॉरर जॉनर की हैं, जिसको देखकर एकदम दिल दहक जाए.
10: देखो, मेरे सारे फॉलोअर्स को पता है कि मुझे भूत प्रेतों की बातें करने में मजा बहुत आता है. तो जहाँ भूत दिखते हैं वहां मैं पहुंच जाती हूँ. तो बॉलीवुड की जो हॉरर फिल्म है ना, वो देखने का अलग ही मजा है, क्योंकि उसमें गाने भी आ रहे हैं, चटपटा रोमांस भी चल रहा है, तो मजेदार तो होती है. तो बॉलीवुड में जो मेरी फेवरेट हॉरर फिल्म्स हैं, दैट इज 1920. ओ माय गॉड, द क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स में जो हनुमान चालीसा है भाई साहब, गूसबम्स. देन 13 भी, इट्स द ओनली हॉरर फिल्म फ्रॉम इंडिया जिसने एक्चुअली में मुझे डराया था. इट्स अ साइकोलॉजिकल हॉरर और इसमें भूत नहीं है. एंड में बताते हैं क्या हो रहा था, बट अ वेरी गुड फिल्म. एंड देन भूत उर्मिला की, if you have watched, तो ये मेरे को बहुत उसमें भूत से ज़्यादा उर्मिला देख के डर.
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 p.m. The Big Mix with Avni, only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
11: Hey, जल्दी हटा तेरा खटारा, चल हटा.
12: हाँ,
11: जल्दी हटा.
12: हाँ, हाँ.
0: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
9: Still slow-moving traffic around a 27 to 30-minute delay if you're on Sheikh Zayed. Heavy traffic merge to Mohesna. Gets better post-Mohesna. Still showing a 36-minute delay. Do ala saal pe bumper-to-bumper situation hai agar aap Furjan ki or ja rahe hain. In fact, Discovery Garden se Furjan, Muruj, kaafi slow-moving traffic hai. There is thoda bahut traffic agar aap hain Hesse Street pe, especially if you're heading towards City Center Mia Sim. It's going to take you 12 to 15 minutes extra if you're on the Hesse Street going towards City Center Miasim and JVC. थोड़ा बहुत ही सही, एक 5 से 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा अगर आप मरीना से जा रहे हैं JBR. Anything else? Anything unusual you'd like to report? 800-1062 is the number to dial.
13: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2. Big 106.2. Yeah!

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 33 डिग्रीज है, लो जाएगा राम 30 फिलहाल, ह्यूमिडिटी 59% पर।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: got what it takes to say stop.
1: Are you kidding?
0: The Big Cash Call. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Powered by Big Ticket. Coming soon on Big 106.2.
2: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. Four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. T&C apply.
3: Let me tell you something about business. You never really know how far it can take you. Today it might be a license, tomorrow an office, then suddenly you need more visas, a warehouse, maybe even industrial land. So start somewhere that can grow with you. At Umalkwain Free Trade Zone, you get more than a business license. You get one complete ecosystem to start, operate and scale your business with visa and bank account assistance too. Visit uaqftz.com.
4: सुबह उठते ही अपने आलीशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है. शाहरुख्स बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेज स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स. लिव लाइफ किंग स्टाइल.
5: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसकी पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
6: नहीं, ये तो मुफ्त है.
5: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास. चलो फोन लगाओ.
0: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: 92. The Beat of Bollywood.
1: Creditmarket.ae. Don't chase banks. Come to me. Credit cards, loans and mortgages at creditmarket.ae. Call 800 Alfred. Alfred simplifies money.
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae. Let me tell you something about business. You never really know how far it can take you. Today it might be a license, tomorrow an office, then suddenly you need more visas, a warehouse, maybe even industrial land. So start somewhere that can grow with you. At Umal Quain Free Trade Zone, you get more than a business license. You get one complete ecosystem to start, operate and scale your business with visa and bank account assistance too. Visit uaqftz.com.
2: सुबह उठते ही अपने आलीशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंट्स के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है. शाहरुख बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स. लिव लाइफ किंग स्टाइल.
3: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस से मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ.
4: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं.
0: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. बिग 106.2 दैट्स माय सॉन्ग.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. नो रश, नो नॉइस, जस्ट सोल सूथिंग म्यूजिक ऑन अ मूनलिट राइड. दिस इज द बिग चिल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: আমাশে পানি মত হোশ কি যে যা মুঝে তো মই খিচে ফেরিও
1: বিগ 106.2 দ্য বিট অফ বলিউড দ্য বিগ জেল brought to you by insurancemarket.ae for the best insurance deals in the UAE call 800 alfred 247 listen to her every day
2: mogembo khush hua
3: nikhil aapke hints hain main engagement se lekar sangeet sandhya tak celebrations mein khoob nazar aati hu mere multiple pieces hote hain there's a top there's a bottom and a stunning dupatta mehndi ho ya phir sundowner mujhe festive look ke liye style kiya jata hai main flowy hu main glamorous hu and usually main choli ke sath pehni jati hu what am I talking about
4: lehenga
3: mujhe laga ki saadi ya salwar bologe but lehenga bol hi diya pehli baar mein आपके लिए भी बहुत स्टनिंग कुर्ताज एंड शेरवानी है सो गो एंड हैव अ लॉट ऑफ फन दे've गॉट अ स्टनिंग कलेक्शन
1: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक 5 PM टू 9 PM द बिग थ्रिल विद मानसी ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड Love, lo-fi, and night feels. Your soundtracks to unwind. Only on The Big Chill. On Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2, the beat of Bollywood.